कार्यक्रम समर्पण। प्रत्येक शुक्रबार बिहान 8 बजेदेखि 9 बजेसम्म सुमधुर रसमय भजन का साथ में अवश्य सुन्नुहोला। केवल एफएम अध्यात्म ज्योति 104.8 मेगाहर्ज में। एफएम अध्यात्म ज्योति को प्रस्तुति कार्यक्रम भजन सुमिरन। प्रत्येक शनिश्चरबार बिहान 7 बजेदेखि 8 बजेसम्म अवश्य सुन्नुहोला केवल एफएम अध्यात्म ज्योति 104.8 मेगाहर्जमा। अध्यात्म ज्योतिको यो प्रस्तुतिका प्रायोजक शुद्धताको सुनौलो परम्परा जय माता दी गोल प्यालेस शुक्रपथ न्यू रोड। प्रत्येक आइतबार बिहान 8 बजेदेखि 9 बजेसम्म यहाँहरूकै शुभ सन्देश, शुभेच्छा र प्रेरक प्रसङ्गका साथमा कार्यक्रम

एफएम अध्यात्म ज्योति को अब को प्रस्तुति कार्यक्रम शुभ प्रभात। नमस्कार, स्वागत अनि अभिवादन कार्यक्रम शुभ प्रभात में म सभिका तिवारी अब 8 बजेसम्म मधुर भजनहरुका साथमा यहाँहरुसँग रहनेछु।

0: FM अध्यात्म ज्योति शांति रेडियो।
1: FM अध्यात्म ज्योति को प्रस्तुति में अहिले यहाँ सुन्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम भजनार्पण। यस कार्यक्रम का प्रायोजक
2: जे जे ज्वेलर्स, बसंतपुर न्यू रोड, दमकल नजिक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक मुनी।

0: एफएम अध्यात्म ज्योति को प्रस्तुति में अहिले यहाँ सुन्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम भजनार्पण। यस कार्यक्रम का प्रायोजक
1: जे जे ज्वेलर्स, बसंतपुर न्यू रोड, दमकल नजिक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक मुनी।

0: गोल्ड पैलेस शुक्रपथ न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: वेलकम टू सिस्टर टेलरिंग
2: रेडी मेड या शूटिंग शर्टेज मलाई ट्रैक शूट चाहिए
3: मलाई फ्रॉक
4: मलाई पनि सूट
5: वाओ
6: अनि मलाई

0: गोल्ड पैलेस शुक्लपथ न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: एफएम अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनुहुने महानुभाव मोबाइल नंबर 9841289820 मोबाइल नंबर 9841289820 में संपर्क कर सकूने।
2: आजकल शुद्धता पाउन कति गाह्रो भइसक्यो।
3: जहाँ हेर्यो त्यहाँ मिसावट छ,
2: त्यसैले शुद्धता नै खोजौं। जेजे ज्वेलर्स प्रस्तुत छ जेजे ज्वेलर्स। जेजे ज्वेलर्समा छ सुन, चाँदी तथा हिराका आकर्षक डिजाइनहरूको उत्कृष्ट कलेक्सन। सुन, चाँदी तथा हिरा जे किन्नुहोस् जेजे ज्वेलर्सकै किन्नुहोस्।
4: जेजे ज्वेलर्स बसन्तपुर न्यू रोड दमकल नजिक स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक मुनि। सम्पर्क नम्बर 5320411 9820076888।
2: जेजे ज्वेलर्स शुद्धताको पहिचान।
5: Four, eight.

जा, तू खोई है जिसके लिए इस तरह, भूल जाए तुझे इस तरह जिस तरह, भूल जाती है सुबह गई रात को, भूल जाता है पागल कही बात को।

राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सधैं भरि।

0: अब आओ आज की ये रात हम यूं ही बसर कर लें। तुम अपना मुंह उधर कर लो, हम अपना मुंह इधर कर लें।
1: अगर गुस्सा ही करना है तो गुस्सा इस कदर कर लो, तुम्हारा मुंह जिधर है पीठ भी अपनी उधर कर लो। हाँ, क्या हुआ?

0: 8 फोन नंबर 42 43 736।
1: FM अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनु हुने महानुभाव हरुले मोबाइल नंबर 9841289820 मोबाइल नंबर 9841289820 मा संपर्क गर्न सक्नुहुनेछ।

0: कोई हमरथ मुझको थाम ले, जिंदगी से भाग कर आया हूं।
1: बारिश हो रही है, ये बारिश न होती तो भी ना आती।

0: गोल्ड पैलेस सुप्रपत न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: रेडी मेड या शूटिंग शर्टेज मलाई ट्रैक शूट चाहिए
2: मलाई फ्रॉक
3: मलाई पनी सूट
4: अनि मलाई

0: रसावेल चुच्चे पाकी
1: एफएम अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनुहुने महानुभाव मोबाइल नंबर 9841289820 मोबाइल नंबर 9841289820 में संपर्क करना सकूने।

0: ए जी कहाँ जाता नी?
1: दलानी में।
0: ए जी आधा बेरा के बाद चल जाए, सुनी हमें गो उपाय बताओ तनी।
1: हाँ बताओ ना।
0: आ सुनी दलानी में बिछावन लगा ली, वहाँ में सुतल रहे, आ जैसे बाबूजी के आँख लाग जाई, खिड़की लगे रहुआ आके सिस्कारी मार देब, हम दुआरी फटाक से खोल देब, और फेरू रहुआ भोर होके से पहले बाबूजी के जागे के पहले ही भाग के दलानी में चल जाए।
1: खूब सिखवलू, बुढ़ारी में नींद कहाँ आवेला। बाबूजी हमार रात भर खोखत रहलन आ जागत रहलन, जाए दो हमरा के दलानी में।
0: नहीं हम नहीं जाए देब।
1: अरे बात मानो।
0: नहीं ना ना।

0: अबिन अपने सुनत पानी रउआ लोगन के अपन दिल के धड़कन कार्यक्रम फूल झड़ी
1: कहीं ना का कहतनी झूलन आयल है कि ना हो कहा आयल हो अब आवते हो ए बूढ़ी बुझाता झूलनवा के कोनो नजरिया दे ले बिया आ ना तो कोनो जरूर चुड़ैल बगड़ ले बिया भगवान जाने छोड़ी जाए दी
2: ए बबुआ घर तो केहू औरी बाना तू ही चल जा हमरा घरे मोटरसाइकिल से जा गुड्डी के बुला ले आवा भोलू के संगे ले लो
3: ना भौजी उन्हें से आओ में तीन सवारी कैसे बैठी
2: अच्छा ईला बबुआ ईला चिट्ठी हमरे माई का दे दी हो का हो रंगीला का हाल बा
3: हाल का बताई हाल तो बेहाल हो गई बा जिंदगी अपने आप में सवाल हो गई बा जब से देखले हैं तोहार फोटो लेके भौजी से ए गुड्डी का बताई जियल मोहाल हो गई बा आइल बानी तोहरा के लेवे का विचार बा प्रणाम मावा
2: अरे बचवा कह का बात बा सब कुशल बा ना
3: हाँ सब ठीक बा भौजी चिट्ठी दे ले हो ई लिहल जाओ
2: माई हम झूलन के गांव घुमा के ले आवत हैं अरे गुड्डी कुछ खियालू पियालू नहीं और गांव घुमाएबो हाँ बस माई 10 मिनट लगी

0: अबिन अपने सुनत पानी रउआ लोगन के अपन दिल के धड़कन कार्यक्रम फूल झड़ी
1: बाबूजी हम चाहत हैं बबुआ के झरिया भेज दी वहाँ एगो मंत्री से हमार थोड़ बहुत जान पहचान बा ओकर नौकरी लाग जाई
2: ई तो बहुत अच्छा बात बा ए आनंद मोहन हमार दावा पानी हो ये गईल तू जा कमाए झरिया
3: बाबूजी
2: कनिया के चिंता छोड़ दो हम ओकरा भाई के बोलवा के नैहर भेजवा देबनू
1: अरे बाबूजी इतना लम्हर घर बा कनिया एजा भी रह सकेली ए घर में बढ़ले के बा दूगो छोट छोट लड़का और हम
2: ना कनियावा नैहर चल जाए तो कुछ करो मन लाग जाई जैबू कनिया नैहर
4: हाँ बाबूजी हमरा के भेजवा दी

0: गोल्ड पैलेस सुप्रपथ न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: एफएम अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनुहुने महानुभाव मोबाइल नंबर 9841289820 मोबाइल नंबर 9841289820 में संपर्क कर सकूने।

0: शांति आराधना र उपहारका लागि समेत प्रयोग गर्न सकिने कञ्चनजङ्घा अगरबत्ती नेपालको पहिलो ISO सर्टिफाइड अगरबत्ती कम्पनी।
1: कञ्चनजङ्घा अगरबत्ती पवित्र सुवास।
2: अभी आपने सुना था नहीं रउवा लोगों के अपन रेडियो स्टेशन FM अध्यापक ज्योति 104.8 मेगाहर्ट्ज़।

0: अभिन अपने सुनतनी रउवा लोगिन के अपन रेडियो स्टेशन एफएम अध्यात्म ज्योति 104.8 में रहल छ।
1: अभिन अपने सुनत पानी रउवा लोगन के अपन दिल के धड़कन कार्यक्रम फूल झड़ी।

0: अबिन अपने सुनत पानी रउआ लोगन के अपन दिल के धड़कन कार्यक्रम फूल झड़ी
1: आवा गुड्डी आवा।
2: तू इतना प्यार करेला हमरा से ई हमरा आज पता चलल। का गरज रहे लड़की बन के डोमकच में आईला के, चोट तो नहीं लागल कस के?
1: हम तोहरा से प्यार करीला गुड्डी।
2: प्यार तो हमहू करीले झूलन तोहरा से, जिंदगी के सुखल बाग में बहार आ गईल बा, मुरझायल रूपवा पर सिंगार आ गईल बा। का जाने कौन मंत्र मार देले बाड़ो।

0: अबिन अपने सुनत पानी रउआ लोगन के अपन दिल के धड़कन कार्यक्रम फूल झड़ी
1: अरे कंवरिया खोला ना हो आवो तनी बड़का घर घूमनी भइल बाड़ी बड़का नस देखवा भइल बाड़ी बुढ़ारी में उल्टी पाला मार के हिरनी ऐसन कूदत चलत डरी आवो तनी ए इका करता नी जी अरे बीड़ी निकालत तनी अरे हटी मार मुँह देखे रे लाजो ना लागे लजैती तो लैकन के मुँह ना देखती बीड़ी ऐसन बीड़ी ना आ बीस गो बखेड़ा भोर कर दिली नाच देख के आ एगो बीड़ी ला भाषण दे दड़ी ए हो बूढ़ी आ गुड़िया गई का हो हाँ गईल गाँव भर के रोग छूटल रोग बढ़ल की छूटल अब फेरू झूलनवा पगलाई का रे पगला के का करिए लड़कियों चाही या दहेजो चाही अपने कैसे एगो घड़ीला मारो में से भागत रहनी जैसन चाचा वैसन भतीजा
2: प्रणाम काका जी
1: खुश रहे दुलहिन ए बूढ़ी कनियावा आइल बिया रउए से बतियावे के बा उनका
2: काका जी राउर बात गांव भर के लोग मानेला
3: One oh four eight.

0: गोल्ड पैलेस सुप्रपथ न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: FM अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा व उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनु हुने महानुभाव मोबाइल नंबर 9841289820 मोबाइल नंबर 9841289820 में संपर्क कर सकूने।

0: गोल्ड पैलेस शुक्लपथ न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: एफएम अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनुहुने महानुभाव मोबाइल नंबर 9841289820 मोबाइल नंबर 9841289820 में संपर्क कर सकूने।

0: गोल्ड पैलेस शुक्रपथ न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: FM अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनु हुने महानुभाव मोबाइल नंबर 9841289820 मोबाइल नंबर 9841289820 में संपर्क करना सक्नु हुनेछ।

0: राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सधैं भरि।
1: FM AJ 104.8 MHz।

मेरे शहर में कुछ ऐसे लोग मिले जो दिल में उतर गए, और कुछ ऐसे भी मिले जो दिल से उतर गए। मेरे शहर में कुछ ऐसे लोग मिले जो दिल में उतर गए, और कुछ ऐसे भी मिले जो दिल से उतर गए। मुश्किलों में थामा हाथ अनजानों ने, पहचान वाले तो साफ मुकर गए। वीकेंड क्लासिक रेडियो शो पर मैं हूं रुचि आपके साथ, एक और बार, एक और हफ्ता, एक और शो, एक और शख्सियत के साथ मैं लौट आई हूं यहां पर। आज हम एक ऐसे इंसान के बारे में बात करने वाले हैं जिनके चेहरे को देख के, जिनके गानों को सुन के, जिनके हाव भाव देख के हम सोच भी नहीं सकते हैं कि कितनी हार्डशिप्स, कितनी प्रॉब्लम्स, कितनी कठिनाइयां जो हैं वो इन्होंने भी झेली हैं। बात कर रही हूं मैं द वेरी ब्यूटिफुल, चेहरे से भी और आवाज से भी, अलका याग्निक जी की। बचपन में जब बच्चे लड़कियां डॉल्स से खेला करते थे, तब अलका याग्निक जी किस चीज से खेलना पसंद करती थी बताऊंगी आपको बस कुछ ही देर के बाद। लेकिन उसके पहले जो एवरग्रीन डुओ था अलका याग्निक जी के साथ उदित नारायण जी, दोनों की ही आवाज में गाना फ्रॉम द फिल्म कहो ना प्यार है।

0: गोल्ड पैलेस सुक्रपत न्यू रोड काठमांडू। फोन नंबर 42 43 736।
1: FM अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनुहुने महानुभाव मोबाइल नंबर 9841289820 मोबाइल नंबर 9841289820 मा संपर्क गर्न सक्नुहुनेछ।
2: आजकल शुद्धता पाउन कति गाह्रो भइसक्यो।
3: जहाँ हेर्यो त्यहाँ मिसावट छ,
2: त्यसैले शुद्धता नै खोजौं। जेजे ज्वेलर्स प्रस्तुत छ। जेजे ज्वेलर्स मा छ।

0: सुन चाँदी तथा हीरा का आकर्षक डिजाइनहरुको उत्कृष्ट कलेक्शन सुन चाँदी तथा हीरा जे किन्नुस जे ज्वेलर्स के किन्नुस
1: जे ज्वेलर्स बसंतपुर न्यू रोड दमकल नजिक स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक मुनी
2: संपर्क नंबर 5320411 9820676888
0: जे ज्वेलर्स शुद्धता को पहचान।

वीकेंड क्लासिक रेडियो शो पर मैं हूं रुचि आपके साथ, और आज के एपिसोड में बेहतरीन गाने सुरीली आवाज वाली अलका याग्निक जी के चुन के लेकर आई हूं मैं आपके लिए। पसंद आए तो कमेंट जरूर कीजिएगा। फिलहाल मैं आपको बता रही थी कि बचपन में जब हम सभी लोग डॉल्स से खेला करते थे, खिलौने लेकर आया करते थे, अलका याग्निक जी को रेडियो कलेक्ट करने का बड़ा शौक था। जब भी बाहर जाती थी अपने माँ बाप से कहती थी कि मुझे एक नया रेडियो सेट ला के दो। माशाल्लाह थैंकफुली काफी वेल टू डू फैमिली से भी थी अलका याग्निक जी, तो कभी उन्हें मना नहीं किया गया। तो बचपन से ही अलका याग्निक जी के पास में एक बड़ा सारा कलेक्शन था रेडियो सेट्स का, जिसपे वो दिन रात सुबह शाम बैठ के सिर्फ लता जी के गाने सुना करती थी। अलका याग्निक कहती है कि उन्होंने इतना सुना है लता मंगेशकर जी को कि वो उनके अंदर ही बस गई हैं। और तो और, जैसे द्रोणाचार्य था वैसे ही लता जी को अलका याग्निक अपना गुरु मानती हैं। चाहे उन्होंने कभी लता जी से सीखा नहीं, लेकिन कहती जरूर हैं कि लता मंगेशकर ही मेरी गुरु हैं। इनफैक्ट अलका याग्निक जी ने लता मंगेशकर जी की तरह गाने की कोशिश भी की थी रेफ्यूजी फिल्म के एक गाने में। वही गाना चलिए सुनाते हैं आपको वीकेंड क्लासिक रेडियो शो पर।

0: गोल्ड पैलेस शुक्लपथ न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: FM अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनुहुने महानुभाव हरुले मोबाइल नंबर 9841289820 मोबाइल नंबर 9841289820 मा संपर्क गर्न सक्नुहुनेछ।

वीकेंड क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप, मैं हूं रुचि आपके साथ। आज यहां पर तो हम ये खास एपिसोड लेकर के आए हैं अलका याग्निक जी के नाम। आप सुन रहे हैं अलका जी के गाए हुए बेहतरीन गाने। लेकिन क्या आपको पता है, अलका याग्निक जी को खुद के गाने सुनना बिल्कुल पसंद नहीं है। रेडियो पे कभी उनका गाना आ जाए या किसी शादी में किसी पार्टी में उनका गाना बज जाए या फिर वो कहीं रिकॉर्डिंग में जाती थी और लोग इनको इन्हीं के गाने सुनाए तो वो जगह छोड़ के चली जाया करती थी और आज तक भी ऐसा ही करती हैं। अलका याग्निक जी का मानना है कि वो जब भी अपने खुद के गाने सुनती हैं तो उन्हें सिर्फ गलतियां दिखाई देती हैं और फिर वो सैड हो जाती हैं, डिप्रेशन में आ जाती हैं कि मैंने उस समय इतना बुरा क्यों गाया था। हमसे पूछिए अलका जी, हमारे हिसाब से आपसे बेहतर ना कोई गा पाया था, ना कोई गा पा रहा है, ना ही कोई गा पाएगा। तो अलका जी की ही आवाज में अगला गाना और प्यार हो गया फिल्म से सुनाते हैं। इतनी प्यारी आवाज, पूरी आवाज लेकिन अधूरी प्रेम कहानी अलका याग्निक जी की। बात करेंगे इसके बारे में कुछ ही देर के बाद।

दिल की आवाज को इजहार कहते हैं, झुकी निगाहों को इकरार कहते हैं। दिल की आवाज को इजहार कहते हैं, झुकी निगाहों को इकरार कहते हैं। सिर्फ पाने का नाम इश्क नहीं, कुछ खोने को भी प्यार कहते हैं। वीकेंड क्लासिक रेडियो शो पर वेलकम बैक। मैं हूं रुचि, आपके साथ अलका याग्निक जी की जिंदगी के बारे में आज कुछ बातें कर रहे हैं, उन्हीं के कुछ चुने हुए गाने आपको सुना रहे हैं। क्या आप जानते हैं अलका याग्निक जी अभी तक में मतलब फॉरएवर के लिए एक लॉन्ग डिस्टेंस मैरिज में रही हैं। इनके पति जो हैं वो हमेशा से बाहर रहते आए हैं, शिलोंग से थे, वहीं पर बिजनेस था, अब्रॉड रहते आए हैं। महीने में कभी एक बार या दो महीने में एक बार अपने परिवार से मिलने के लिए आ जाया करते थे। अलका याग्निक जी के पति का मानना है कि ये म्यूजिक जिससे अलका जी इतना प्यार करती हैं, इस म्यूजिक ने ही उन्हें और उनकी बीवी को जुदा कर दिया एक दूसरे से। लेकिन अलका जी ने हमेशा माना कि मेरा पहला प्यार तो म्यूजिक ही है, इसलिए उन्होंने म्यूजिक के साथ अपना रिश्ता निभाया। इनफैक्ट बीच में एक ऐसा फेज भी आया था जब 4 से 5 साल के लिए अलका जी और उनके पति सेपरेट हो गए थे, साथ में नहीं रहते थे, लीगली सेपरेट हो गए थे। लेकिन फिर उनकी बेटी साहिशा के कारण, खुद के रिश्ते, खुद के प्यार मोहब्बत के कारण, एंड अलका याग्निक जी कहती हैं कि उनके पति की अंडरस्टैंडिंग के कारण ये दोनों वापस एक दूसरे के साथ आ गए। आज की तारीख में अलका जी की बेटी साहिशा का एक रेस्टोरेंट भी है मुंबई में, जो कि काफी अच्छा चलता है। लेकिन जैसा

रिश्ते खुद के प्यार मोहब्बत के कारण, एंड अलका याग्निक जी कहती हैं कि उनके पति की अंडरस्टैंडिंग के कारण ये दोनों वापस एक दूसरे के साथ आ गए। आज की तारीख में अलका जी की बेटी सायशा का एक रेस्टोरेंट भी है मुंबई में, जो कि काफी अच्छा चलता है। लेकिन जैसा अलका

न पूरी तरह से काबू, न पूरी तरह से पूरा है, न पूरी तरह से काबिल, न पूरी तरह से पूरा है, हर एक शख्स कहीं ना कहीं से अधूरा है। वीकेंड क्लासिक रेडियो शो पर मैं हूं रुचि आपके साथ, और आज लेकर के आई हूं मैं अलका याग्निक जी के कुछ चुने हुए गाने। 90s के जमाने में अनुराधा पौडवाल, जो कि अपने करियर के प्राइम पे थी, अनुराधा पौडवाल जी को पीछे छोड़ करके अलका याग्निक जी ने अपना साम्राज्य बना लिया था बॉलीवुड इंडस्ट्री में। लेकिन उसके बाद समय आया सुनिधि चौहान और श्रेया घोषाल का। ऐसा नहीं है कि अलका याग्निक जी को किसी से कुछ परेशानी हुई, लेकिन देखते हुए कि समय बदल रहा है, लोगों की म्यूजिक प्रेफरेंस बदल रही है और जमाना बदल रहा है, तो अलका जी ने रिटायरमेंट जैसा कुछ ले लिया। अब वो फिल्मों में गाने कम ही गाती हैं, स्टेज शोज अभी भी किया करती हैं, लेकिन अपने परिवार के साथ समय ज़्यादा बिताना पसंद करती हैं। तो अलका याग्निक जी के गाने हमें तो हमेशा से पसंद आए थे, आज भी आते हैं। उदित नारायण जी के साथ, जैसा मैंने कहा था शो की शुरुआत में ही, कि वन ऑफ द बेस्ट डुओज, सिंगर डुओज ऑफ बॉलीवुड, उदित नारायण जी के साथ में हिमालय पुत्र फिल्म का गाना था, ना वो इनकार करती है। सुनाते हैं आपको वीकेंड क्लासिक रेडियो शो पर।

कैसा लगा आपको ये शो? हर हफ्ते हम क्लासिक रेडियो शो का एक नया एपिसोड लेकर आते हैं, सो डू ट्यून इन एवरी वीक। चलिए तो मैं रुचि यहाँ से विदा लेती हूँ, मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते

6 बजे। अब FM अध्यात्म ज्योति 104.8 मेगाहर्ज को संध्याकालीन प्रसारण प्रारम्भ हुन्छ। FM अध्यात्म ज्योति प्रस्तुत गर्दछ संध्याकालीन सेवामा शुभ संध्या।

0: राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सधैँभरि।
1: एफएम अध्यात्म ज्योति 104.8।

0: राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सधैँ भरि।
1: एफएम अध्यात्म ज्योति 104.8।

0: भज बाल कृष्ण नंदलाल गोविंद गोपाल,
1: भज बाल कृष्ण नंदलाल गोविंद गोपाल,
0: तेरी माधुरी मूरत पे वारूं गोपाल,
1: तेरी माधुरी मूरत पे वारूं गोपाल,
0: भज बाल कृष्ण नंदलाल गोविंद गोपाल।

हिरण कभी भी दौड़ता है तो आगे देखता है, पीछे नहीं देखता। लेकिन मारीच जो सुवर्ण का वर्ग बनकर के आया, माताजी ने आग्रह किया राम जी लक्ष्मण को छोड़कर जब गए तो कहते हैं हिरण दौड़ रहा है आगे और देख रहा पीछे, क्योंकि उसने सोचा जितना राम को निहार लू उतना ही कल्याणकारी। बाण लगती हाँ लक्ष्मण कह दिया, माताजी ने उनको भी भेज दिया, रावण संत के रूप में आया, परम्बा का हरण कर लिया। दक्षिण भारत में एक ग्रंथ है, दक्षिण की यात्रा पर जब मैं था तो मैंने उस ग्रंथ का हिंदी रूपांतर देखा, तमिल भाषा में था। एक इतनी विचित्र बात लिखी उस ग्रंथ के महापुरुष ने, कहा कि माता जानकी जी के हरण से लेकर के अपनी मृत्यु पर्यंत रावण की दृष्टि में जानकी केवल माता ही थी और कुछ नहीं थी। उन्होंने वहां तर्क प्रस्तुत किए। वो संत लिखते हैं कि रावण ने यदि जानकी जी का स्पर्श करके उनको रथ में बिठाया, आकाश मार्ग से ले गया, तो उसके सिर के 100 टुकड़े क्यों नहीं हुए? क्यों? क्योंकि रावण को तो शाप लगा हुआ था कि काम भावना से किसी भी नारी का तुम स्पर्श करोगे तो तुम्हारे सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। तो माता जानकी जी को हरण करके ले जा रहा है, तब सिर के 100 टुकड़े क्यों नहीं हुए? तो संत ने अपना तर्क प्रस्तुत करते हुए कहा, क्योंकि एक माता जानकी जी के हरण से लेकर अपनी मृत्यु पर्यंत रावण की दृष्टि में वो केवल मां ही हैं और कुछ है ही नहीं। क्योंकि ये उसको सांप लगा था, किसी भी स्त्री को तुम काम भावना से स्पर्श करोगे अपनी पत्नी के अलावा तो तुम्हारे सिर के टुकड़े हो जाएंगे, मर जाओगे। पर ये सांप थोड़ी लगा था कि माता जी को भी उठा करके बिठाओगे तो तुम्हारे सिर के 100 टुकड़े होंगे। इससे सिद्ध होता है कि रावण माता का ही भाव था जानकी के प्रति। तो कहते हैं फिर उन्होंने अपने आप तर्क दिया, फिर उसने ये क्यों कहा जानकी जी से अशोक वाटिका में, तब अनचरी करहूं पन मोरा, एक बार बिलोक मम ओरा। चाहता था कि माता वास्तव में आपकी दृष्टि पड़ने से ही मेरा कल्याण होगा, इतनी स्त्रियों को मैंने यहां चुरा करके रखा हुआ है, ये और मैं हम सब पाप के भागी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आपकी कृपा दृष्टि यदि मेरे और इनके ऊपर पड़ जावे तो हमारा और इनका सबका कल्याण हो सकता है। तब अनुचरी करहूं पन मोरा, एक बार आप कृपा दृष्टि डाल दें, क्योंकि माता की दृष्टि जिस पर पड़ जाए उसके सारे दोष माफ, सौ खून माफ। जटायु को जब राम जी ने गले से लगाया और जटायु जी का दाह संस्कार किया, जबकि पक्षी का संस्कार ऐसा करना नियम विरुद्ध है, और भगवान ने जटायु का दाह संस्कार किया तो लिखा है कि जटायु हरि का रूप राम का रूप लेकर के वैकुंठ गया, हरि का रूप ले लिया, उसको मुक्ति मिल गई। तो प्रश्न होता है कि जटायु को मुक्ति क्यों मिली? क्योंकि मुक्ति को पाने के लिए जिस सर्टिफिकेट की जरूरत होती है वो जटायु के पास में तो था ही नहीं। एक तो पक्षी, और पक्षियों में भी सबसे निकृष्ट पक्षी यदि कोई होता है तो वो गिद्ध होता है, सामिस भोगी, सामिस भोजी होता है वो। ये गिद्ध जो होता है मरे हुए पशुओं को खाता है, उस परिवार में जन्मे थे जटायु जी। फिर उसको मुक्ति क्यों मिली? बोले सत्संगी होंगे। जटायु ने अपने जीवन में किसी संत के पास बैठकर 2 मिनट सत्संग किया ऐसा हमने किसी शास्त्र में नहीं देखा। फिर जटायु को मुक्ति क्यों मिल गई? पर जटायु माला जपते होंगे 50 माला रोज, श्री राम शरणम मम है, तो माला भी तो कभी उन्होंने जपी नहीं। गिद्ध जाति में जन्म लिया, मांस भक्षण करने वाला परिवार, माला कभी जपी नहीं, सत्संग कभी किया नहीं, फलाहार एकादशी व्रत शिव चतुर्दशी कभी रहे नहीं। फिर जटायु को केवल मुक्ति नहीं, तुलसी बाबा तो लिखते हैं कि वह हरि का रूप दूसरा राम बन गया, और हरि रूप लेकर के जटायु सीधा वैकुंठ गया। क्यों?
बोलो उसमें कोई सदगुण नहीं था, मुक्ति का एक भी सर्टिफिकेट नहीं था, फिर भी उसकी मुक्ति इसलिए हो गई कि माता जानकी जी को बचाने के लिए जटायु ने अपने प्राणों की बलि लगाई, प्राणों की बाजी लगा दी। और माता जी को बचाने के लिए जब वो दौड़ा आकाश मार्ग में, तो माता जानकी जी की दृष्टि उस पर पड़ गई, और जैसी कृपा दृष्टि माता जानकी जी की पड़ी तो वो संत भी हो गया, भगवंत भी हो गया और मुक्ति भी पा लिया। मां की जिस पर कृपा उसके लिए कौन बड़ी बात है। इसलिए रावण कहता है जटायु पर दृष्टि पड़ गई तो वो मुक्त हो गया, राम बनकर चला गया, मुझ पर और इन पर दृष्टि पड़ जाए तो हम सबका कल्याण हो जाएगा, क्योंकि उसको ये कंफर्म तो हो ही गया कि राम जी साक्षात भगवान है। एक और बात, जब सबरी को उपदेश देकर के हनुमंत के माध्यम से राम की मैत्री सुग्रीव के साथ में हुई, और सुग्रीव जी महाराज ने कह दिया कि हां हां जरूर कोई नारी थी, रोती जा रही थी आकाश मार्ग से, हम लोग पर्वत शिखर पर थे तो अरे लाना आभूषण मंगाए, ये आभूषण वो आकाश मार्ग से नीचे गिर गई, हम लोगों ने इनको उठा लिया, ये रहे। लक्ष्मण जी ने तो कह दिया ना हम जानामी केजूरे, ना हम जानामी कुंडले, नूपुरे त्वभि जानामी नित्यम पादाभिवंदनात्। ये केयूर हार मुकुट कुंडल किसका मुझे मालूम नहीं, नूपुर तो माता जानकी जी के ही हैं, उनके चरणों की नित्य वंदना करता, इनको तो मैं पहचानता हूं। राम जी जब उसके संग मित्रता करने लगे, लक्ष्मण का नहीं इस आदमी के संग मित्रता मत करो। राम जी बोले क्यों नहीं, ये आदमी मित्रता करने लायक है ही नहीं। बोले क्यों, माता जानकी को इसने रोते हुए जाते देखा फिर भी इसने बचाने का प्रयास नहीं किया। अरे परिचय नहीं था ठीक है, ये जानता नहीं था कौन है ठीक है, यदि ये वीर होता, यदि इसमें मानवता होती, यदि इसमें जरा भी मनुष्यत्व होता तो किसी अबला नारी को आकाश मार्ग में रोते हुए जाते देखा है कि कोई राक्षस हरण करके ले जा रहा है तो इसने अपने प्राणों की बाजी लगाकर उसको बचाने का प्रयास क्यों नहीं किया। ऐसे भीरू ऐसे डरपोक आदमी से मित्रता करने से राम जी कुछ नहीं मिलेगा, मैं इसका विरोध करता हूं, बिल्कुल मित्र मत बनाओ। फिर भी राम जी ने सुग्रीव को मित्रता दी, उसको मित्र बनाया। क्यों? क्योंकि जब माता जानकी आभूषणों को घेरती जा रही थी, सुग्रीव उनको उठा रहे थे, तो एक पल ऐसा हुआ कि सुग्रीव ने ऊपर को देखा, उसी पल माता जानकी जी ने सुग्रीव को देखा और माता की नजर उनकी कृपा दृष्टि सुग्रीव पर पड़ गई, इसलिए प्रभु ने कोई दोष नहीं देखा और सुग्रीव को मित्रता का पद प्रदान कर दिया। इसलिए तो गोस्वामी जी कहते हैं कबहू का मात अवसर पाए, कबहू का अंब अवसर पाए, माता कभी अवसर मिले तो मेरी पत्र का राम के चरणों पर पहुंचा देना। क्योंकि आप उनके अति निकट हैं, मां की दृष्टि जिस पर पड़ जाए उसकी मुक्ति में संदेह कैसा। फिर तो बाली का उद्धार हुआ, सुग्रीव को गद्दी मिली, बाली के पुत्र को अपने सेना में प्रभु ने लिया और सब लोग जानते हैं लंका में श्री हनुमंतलाल पधारे और हनुमान जी महाराज तीन विघ्न आए थे रास्ते में, और हुआ ऐसा कि अक्षय कुमार का कल्याण हुआ, लंका जल गई, मद्रिका दे दी थी, चूड़ामणि लाकर के राम जी को समर्पित कर दी, भगवान रामेश्वर की स्थापना हुई, विभीषण की शरणागति हुई, और राम रावण योर युद्धे राम रावण योरी वह, राम रावण का बड़ा भयंकर संग्राम छिड़ गया और अंत में 31वां बाण जब उसकी नाभि में लगा विभीषण के इशारे से और रावण की मृत्यु हो गई। 14 वर्षों तक अयोध्या में किसी ने अपने घर में दीपक नहीं जलाया, राम के बिना घर में प्रकाश कैसा। 14 वर्षों तक अवध में किसी ने अपने चरणों में पादुका नहीं पहनी, रघुवर नंगे चरणों से वन में भ्रमण करते, हम पादुका कैसे पहने। 14 वर्षों तक किसी ने अयोध्या में बेटा बेटी का विवाह नहीं किया, विवाह करेंगे तो मंगल गीत गाना होगा, राम नहीं तो कैसा मंगल।
यह वैचित्र है। हनुमंत ने सूचना दी और कहते हैं श्री भरत लाल ने देखा आज 14 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं, कोई सूचना नहीं आई। भरतलाल जी महाराज तुरंत महल गुफा से निकले, नंदीग्राम से सेनापति महामंत्री पीछे दौड़ रहे, महाराज सुनिए महाराज सुनिए। बोले मैं कुलंगार हूं, मेरी वजह से रघुबर को इतना क्लेश उठाना पड़ा और वो दौड़ते जा रहे। दौड़े दौड़े महात्मा भरत जी गए, सैनिक रोक रहे, देखे रुके नहीं, उफान लेकर के बह रही है महारानी सरजू। भरतलाल टीले पर चढ़ गए, धड़ाम से सरजू में छलांग लगा दी। राम से कहा था 14 वर्ष एक दिन भी ज्यादा हो गया तो भरत नहीं मिलेगा, कोई सूचना नहीं। और भरतलाल ने जैसे सरजू में छलांग लगाई, त्राही त्राही करने लगे सब लोग, इतना उफान भरता हुआ पानी देखा तो दो महापुरुषों ने तुरंत भरत जी को गोदी में उठाया और जल से ऊपर लेकर के निकले। भरत ने कहा कौन है आप लोग, मर जाने दीजिए ना मुझे, आपने मुझे क्यों बचाया, मैं जीना नहीं चाहता। उन दोनों महापुरुषों ने कहा हम तो राम की चरण पादुका हैं, चित्रकूट धाम से आप हमको लेकर जब आए तो हम दोनों चरण पादुकाओं से राम जी ने कहा कि 14 वर्ष के बाद भी मेरा भरत मुझे सुरक्षित मिलना चाहिए, मेरे भरत की सुरक्षा का दायित्व तो तुम्हारा है, जब तक रघुवर न आ जाए तब तक हम आपका बाल बांका भी होने नहीं देंगे, हम दोनों चरण पादुका है। भरत जी लौट करके आए, हनुमंत ने सूचना दी अवध में आज बड़े दीपक जल रहे हैं, बड़ी खुशियां मनाई जा रही हैं। भरत राम जी मिले, माताओं को प्रणाम किया, प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि किन्हा। रूपशील और बलिय तीनों चीज एक साथ राम और कृष्ण में ही देखने को मिलती है। कोई रूपवान होते हैं तो धनवान शीलवान नहीं होते, कोई शीलवान होते हैं तो बलवान नहीं होते, लेकिन राम कृष्ण रूपवान शीलवान और बलवान तीनों ही हैं। भागवत के अनुसार 13,000 वर्षों तक राम ने प्रशासन किया, रामायण के अनुसार 11,000 वर्षों तक राम ने प्रशासन किया। वाल्मीकि में लिखा है 10 वर्ष सहस्राणि 10 वर्ष शतानि च, 11,000 वर्ष राम ने प्रशासन किया। और भागवत में लिखा 13,000 वर्षों तक राम जी रहे। किसी ने पूछा ऐसा क्यों, अपने ऋषियों का ही मंतव्य है कि 2,000 वर्ष दशरथ जी के जीवन के शेष रह गए थे, उनके पुण्य कार्य को अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिए राम ने 2,000 वर्ष और निवास किया और अवधवासियों को साथ में लेकर के राम जी साकेत धाम को प्रस्थान कर गए। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। भागवत में राम कथा केवल 1.5 अध्याय में है, बहुत संक्षिप्त, इसलिए संक्षिप्त कही गई, और कृष्ण कथा 115 अध्याय में, बहुत विस्तृत है। यदि विस्तार करें तो रामायण सतकोटि अपारा, हे भगवान हजारों जिंदगियां बीत जाएं लेकिन राम कथा पूरी नहीं हो सकती, रामचरित इतना महान इतना अद्भुत है। मेरे बाबा जो थे ना वो हमको 1 मिनट में राम कथा सुनाते थे, पंडित भूपदेव उपाध्याय। हम जब छोटे थे तो गोदी में बिठा लेते हैं, बोले राम कथा सुनाऊं, मैंने सुनाओ, तो बाबा कहते एक राम अन्ना, एक राम अन्ना, एक क्षत्रिय एक बामन्ना, बाने बाकी सिया चुराई, बाने बाकी लंक जराई, और बात कछु बातन्ना, तुलसी लग गए पोथन्ना। हो गई राम कथा 1 मिनट।

इसलिए रामकथा जरूरी है, क्योंकि कृष्ण का जो चरित्र है वो योगेश्वर का चरित्र है, बड़ा विचित्र चरित्र है। कृष्ण चरित्र को सुनना है तो पहले राम चरित्र सुनो, राम की मर्यादा की दूरबीन आंखों पर लगाओ, फिर कृष्ण चरित्र कुछ समझ में आएगा, पूरा तो फिर भी नहीं आना है, इतना विचित्र है मेरे गोपाल का चरित्र। तो हम पहले राम के चरणों में प्रणाम कर लें हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। आइए दो मिनट मन को शांत बनाएं। कुंभकर्ण की पत्नी श्रीमती निद्रा जी यदि आ रही होंगी तो वो सादर पंडाल से बाहर तो भी चली जाएंगी, इसलिए आप बड़ी श्रद्धा से मेरे साथ में आओ गाते हैं।

भगवान राघवेंद्र का पवित्र पावन चरित्र हम लोगों ने संक्षिप्त रूप में श्रवण किया। बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान श्री राम के पावन चरित्र में कहते हैं,

राजन, मैं तुम्हें चंद्रवंश कहता हूं। जिस चंद्रवंश में गोविंद पधारे, बिल्कुल मन को एकाग्र करिए। रामकथा में जितनी एकाग्रता से आप थे, वैसी एकाग्रता रखें, अच्छा लगेगा। नारायण के पुत्र ब्रह्मा हैं, ब्रह्मा के पुत्र अत्रि हैं, अत्रि के पुत्र चंद्रमा हैं, चंद्रमा के पुत्र बुध हैं, बुध के पुरवा इसी वंश में गाधी, गाधी के तने विश्वामित्र, गाधी की बेटी के बेटा जमदग्नि, उनके पुत्र परशुराम आदि। विश्वामित्र महाराज के वंश में कई पीढ़ी बीत जाने के बाद एक राजा हुए नहुष। नहुष महाराज के 6 पुत्र हुए, यति, यजाति, संजाति, आयति, वियति, कृति। उसमें जजाति नाम के जो द्वितीय पुत्र हैं, उनका विवाह शुक्राचार्य की बेटी देवयानी से हुआ। देवयानी का अपराध किया था ना शर्मिष्ठा राजकुमारी ने, इसलिए शर्मिष्ठा उनकी दासी बनकर ससुराल में आई। राजा ने दासी को भी पत्नी के रूप में स्वीकारा।

0: सर्वनिष्ठा वार्ष पर्वणि।
1: यदु और तुर्वसु ये दो पुत्र हुए महारानी देवयानी के, और द्रुहियु अनुपुरु तीन हुए शर्मिष्ठा के। ध्यान से सुने, शुक्राचार्य ने उनको वृद्ध होने का शाप दे दिया, और जजाति ने अपने छोटे पुत्र पुरु की युवावस्था लेकर हजार वर्षों तक कामोपभोग किया। कामनाओं की तृप्ति, कामनाओं की शांति कभी कामोपभोग से संभव नहीं है। इनको तो जितना अपन प्रशमन करेंगे, वश में करेंगे, तो ही संभव है। राजा जजाति के मन में आज बहुत ग्लानि हो रही है। पुत्र की युवावस्था लेकर मैंने कामोपभोग किया, लेकिन तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। शरीर जीर्ण हो गया, लेकिन तृष्णा जीर्ण नहीं होती। जलती हुई अग्नि में एक एक चम्मच भी अपन घृत डालेंगे, अग्नि कभी बुझेगी? देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, उनमें हरदम यशयम के कोड़े लगे। अपने रथ को सुमारग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चले। मात्रा स्वस्रा दुहित्रा वा न विविक्ता सनो भवेत, बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान समपि कर्षति। बड़ा सुंदर सूत्र दिया राजा जजाति। कहते हैं, माता के समान, बहन के समान, पुत्र वधु के समान भी दुलार युक्त आदरणीय नारियों के साथ में विद्वान को भी एकांत में बिना किसी विशेष प्रयोजन के ज्यादा समय नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान समपिकर्षति। इंद्रियों का समूह इतना बलवान है कि बड़े से बड़े विद्वान को फिसलते देरी नहीं लगती। बेटे की युवावस्था उन्हें प्रदान करके अपनी वृद्धता लेकर जजाति वन को चले गए, और इनके लघु पुत्र जो पुरु हैं, पुरु के वंश में ही दुष्यंत महाराज पधारे, और दुष्यंत जी के ही पुत्र ये हुए भरत जी, जिनके नाम से इस राष्ट्र का नाम भारत है। इसी वंश में आदरणीय रंतदेव जी का प्रादुर्भाव हुआ। ऐसी निर्मलता रंतदेव के जीवन की, अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया। एक बार दुर्भिक्ष पड़ गया था राज्य में, पूरा भंडार खोल दिया प्रजा के लिए, जिसको जो चाहिए सो मांगे।
2: थोड़ा सा पड़ोसी प्रांत से जो जल आया था, वो जल पान करने बैठे, एक चंडाल कुत्ते लेके आ गया, मैं भी प्यासा ये भी प्यासे। रंतदेव ने उनको अपना जल समर्पित कर दिया, और उनकी आंखों से आंसू झर पड़े, और आकाश की ओर देख के बोले, प्रभु यदि तुम सबके घट घट में विराजित हो, और यदि सबकी बातें तुम सुनते हो अंदर बैठ करके, तो मेरा निवेदन सिर्फ एक है, मुझे स्वर्ग कभी मत भेजना। मुझे वैकुंठ का पद नहीं चाहिए, मैं मोक्ष लेखन भी करूंगा क्या, केवल एक बर देना,

0: पर्ने जर्मन प्रविधि बनेको उत्कृष्ट उत्पादन ऊर्जा दाल र चामल, ऊर्जा दाल चामल स्वादले खाइन्छ, सधैँ स्वस्थ भइन्छ।
1: एफएम अध्यात्म ज्योतिका लोकप्रिय कार्यक्रमहरू प्रायोजन गर्न अथवा यहाँको सेवा वा उत्पादनको विज्ञापन गर्न चाहनुहुने महानुभावहरूले मोबाइल नम्बर 9841289820 मोबाइल नम्बर 9841289820 सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ।
2: राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम् राम नाम वरारमे। पूर्ण ब्रह्म परम पिता परमात्मा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की अनंत अपार लीला जानने और सुनने पर जिज्ञासु भक्तों में रामत्व को पाने की ललक बढ़ जाती है कि राम अवतार का कारण क्या है, कौन है श्री राम और उनका स्वरूप निर्गुण है या सगुण, द्वैत या अद्वैत, वो जन्मा है या अजन्मा और राम नाम की महिमा क्या। इस जिज्ञासा का नम्र निवेदन यह है कि जैसा गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है, यथा अनंत राम भगवाना तथा कथा कीर्ति गुण नाना, जैसे प्रभु राम अनंत हैं उनकी कथा लीला गुण कीर्ति भी अनंत है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, और भगवान के प्राकट्य के कारण भी अनंत हैं। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एकते एका, प्रभु के प्राकट्य के अनेकों अनेक कारण हैं जो सभी परम लुभावने व विचित्र हैं। परंतु मूल यही है कि धर्म स्थापना व अधर्म के नाश के लिए और अपने भक्तों की रक्षार्थ प्रेमवश परमात्मा का पुनः पुनः प्राकट्य होता है। जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ ही असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरही कृपानिधि सज्जन पीरा। और रहे उनकी स्वरूप की बात, तो सगुण ही अगुण ही नहीं कुछ भेदा, गाव ही मुनि पुराण बुद्ध वेदा, अगुण अरूप अलख अज जोई, भक्त प्रेम बस सगुण सो होई। साकार निराकार में कोई भेद नहीं मेरे भाई, प्रभु का स्वरूप तो वैसा ही है जैसा हमने उन्हें ध्याया है। वो तुलसी के सगुण साकार हैं तो कबीर के निर्गुण निराकार, मीरा के राम रतन, और राम नाम की महिमा तो इतनी भारी है कि उल्टे नाम जपे जग जाना, बाल्मीक भय ब्रह्म समाना। और सत्यानंद जी ने तो उन्हें शब्दा रूप में पाया, उस आकारण करुणाकरण सर्वज्ञ सर्वत्र सुजान को हमने जैसा ध्याया है उन्हें वैसा ही पाया है।

अरविंद से राम के चरणारविंद, प्रभु का नाम जपते हुए आनंदित होकर गाएं हृदय से कहीं, मेरे राम प्यारे तू मेरा मैं तेरा, तू मेरा मैं तेरा।